0: আকাশবাণী কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে এক সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা উপকূল ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঝোড়ো আবহাওয়ার সঙ্গে 35-45 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইবে, যার গতিবেগ 55 কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। সেই জন্য মৎস্যজীবীদের আজ 28 জুলাই পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ উপকূল ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে শুভাশিত।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ

0: दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वह नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैराशॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Neena Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर

वो पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: শুনলেন ভজন, শিল্পী ছিলেন শম্পা রায়। আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। একটু পরেই খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नीट प्रकरणे छात्राणां विरोध प्रदर्शनावधौ कथितारक्षकैः कृतानि कार्याणि अधिकृत्य विपक्षदलानां कोलाहलात् ह्यः संसदः उभे सदने लोकसभा राज्यसभा च स्थगिते अभवताम्। लोकसभायां ह्यः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः एतत् विधेयकं सदने प्रस्तुतवान्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि सन्ति। तेषु दोष सिद्धानां कृते अधिकतमः 10-वर्षीयः कारावासः, 10-कोटिरूप्यक पर्यन्तः अर्थदण्डः तथा दोष सिद्धानां सम्पत्त्यधिग्रहणञ्च सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्र निस्तारणं सुनिश्चितुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेष द्रुत न्यायालयानां स्थापनं विधेयके अनिवार्यरूपेण विहितम्। एतदपि विधीयते यत् अपराधस्य सूचना आरक्षक स्थानके अभिलिखित दिनांकात् 2 मास

0: साभ्यन्तरे अन्वेषणं सम्पन्नं भवेत् तथा च आरोपपत्रप्रस्तुतेः त्रिमासाभ्यन्तरे न्यायनिर्णयः सम्पन्नः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य पवनचन्दना नागाभरत डाका इत्येताभ्यां सह संवादम् अकरोत्। सामाजिकसञ्चारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वार्तालापे विक्रम 1 इत्यस्य सफलता विशेषतया चर्चिता, अन्येष्वपि कतिपयेषु रोचकविषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्री तयोः जीवनयात्रां भावियोजनाश्च श्रुत्वा हर्षम् अभिव्यक्तवान्। तेनोक्तम् यत् तयोः ऊर्जा, महत्वाकांक्षा, सकारात्मक दृष्टिश्च भारतस्य निज अंतरिक्ष परितंत्रस्य सजीव भावनां प्रतिबिंबयति। प्रधानमंत्री स्काईरूट एरोस्पेस इत्यस्य समूहस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। उत्तर प्रदेश प्रशासनेन उच्चतम न्यायालयः संसूचितः यत् अयोध्या स्थितस्य राममंदिर न्यासाय प्राप्त दानराशेः कथित दुरुपयोगस्य अन्वेषणार्थं लखनऊ परिक्षेत्रस्य आरक्षक महानिरीक्षकस्य किरण एस इत्यस्य अध्यक्षतायां चतुर्सदस्यात्मकं विशेषान्वेषण दलं निर्मितम्। अस्मिन् दले एकः आरक्षक उपमहानिरीक्षकः, एकः वरिष्ठाराक्षक अधीक्षकः, एकक्ष अपर आरक्षकाधीक्षकः अपि भविष्यन्ति। उच्चतम न्यायालयेन राज्य प्रशासनं निर्देशितं यत् विशेषान्वेषण दले पंचम सदस्य रूपेण न्यायिक लेखा परीक्षकः अपि नियोज्यताम्। एतद्दलं द्विसाप्ताहाभ्यन्तरे स्व प्रथम स्थिति प्रतिवेदनं न्यायालये समर्पयिष्यति। न्यायपीठं राममन्दिरदानराशेः कथित दुरुपयोगस्य तथा न्यासस्य वित्तीय लेखानां केन्द्रीयान्वेषण विभागेन अन्वेषणार्थं प्रस्तुताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिरदानचौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः 14 दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकञ्च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम की गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन

0: के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉट पुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in the protest over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on 26th of July. As per the official statement, persons arrested or detained in connection with cases filed prior to the deadline will be released immediately. The government also guaranteed that no future direct or indirect action will be taken regarding incidents before the cut-off time. Assam's Home and Political Department also informed that cases had been registered in Assam in connection with the protests resulting in the arrest of 13 persons. However, the state

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई।

0: विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा

0: देना है। एक रिपोर्ट।
1: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्लेबुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाऊंगी।

0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने ना पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into the future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram 1.
3: पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संजीदा चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट पूजा, लेकर

ये कार्यक्रम भाव प्रधान गीतों और बातों का कार्यक्रम रसधारा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर आज रसधारा के अंतर्गत हम बात करेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे उठाए जाने वाले कदमों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्यक्रम में जानकारियों के साथ बातों के साथ सिलसिला गीत संगीत का भी शामिल होता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नलिन दवे और अलका याग्निक की आवाजों के साथ।

प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह केवल एक दिन नहीं बल्कि पृथ्वी के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण करने वाला वैश्विक अभियान है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जल संकट, जैव विविधता का क्षरण आज पूरी मानवता के सामने गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ऐसे समय में हमारे लिए ये समझ लेना आवश्यक है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों की या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में, अपनी जीवनचर्या में उतारना होगा पर्यावरण संरक्षण को। वास्तव में यदि हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे छोटे सरल कदम उठाए, अपनी आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन लाए तो धरती को सुरक्षित और सुंदर बनाया जा सकता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, हरियाली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि मानव अस्तित्व को बचाए रखने, बनाए रखने की आवश्यकता है। और पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से होती है, या यूं कहें अपने आप से होती है। किस तरह हम छोटी छोटी अपनी आदतों को बदल कर या डाल कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं, इसी विषय पर बात होगी आज के इस कार्यक्रम रसधारा में।

जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तो हम चारों तरफ से परिआवरण यानी कि चारों ओर से जिसने हमें घेर रखा है वो है हमारा पर्यावरण। और आप सभी जानते हैं कि एक तिहाई भाग जलमग्न है, तो पर्यावरण संरक्षण की पहली सीढ़ी, पहला कदम है जल संरक्षण। अब हम घर से बाहर जाकर कुछ करें इससे पहले नल को अनावश्यक खुला छोड़ने की आदत से बाहर निकलें। बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है। हम नहाते समय

शावर का उपयोग करते हैं, अनायास पानी बहता है। बाल्टियों पानी बह जाता है अगर हम उसे मेजर ना करें। और आपसे कोई कह दे कि आप 4 बाल्टी पानी उठाकर फेंक दीजिए तो शायद आपसे ना फेंका जाएगा। बेहतर है कि पानी को किसी पात्र में रखें, फिर उसे इस्तेमाल करें। आपको इस बात का आकलन भी होगा कि आपने कितना पानी प्रयोग में लाया। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिए। सोच समझ कर पानी का उपयोग करें और देखें किस तरह एक कदम आगे बढ़ते हैं हम पर्यावरण संरक्षण की ओर, किस तरह अपने भविष्य की अमूल्य धरोहर पानी को बचाने में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाया गया पहला कदम अगर जल संचय है तो उतना ही महत्वपूर्ण है वृक्षों का संरक्षण। पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि वातावरण को शुद्ध रखते हैं, तापमान को नियंत्रित रखते हैं, अनेक जीव जंतुओं का आश्रय होते हैं और साथ ही साथ जल के संचयन का भी स्रोत होते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल कर उसे वृक्ष बनने तक संभाले तो हरित क्रांति का नया अध्याय लिखा जा सकता है। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग भी पर्यावरण संरक्षण का एक प्रभावी उपाय है। एकल उपयोग सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वर्षों तक नष्ट नहीं होते तथा भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करते हैं। इसके स्थान पर कपड़े या जूट के थैले, स्टील की बोतलें, पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। यह छोटा सा परिवर्तन पर्यावरण पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

जब बात करते हैं हम प्रकृति संरक्षण की, तो ऊर्जा की बचत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। कमरे से निकलते समय बिजली के उपकरण बंद करना, एलईडी बल्बों का उपयोग करना, प्राकृतिक प्रकाश और हवा का अधिक से अधिक उपयोग करना तथा अनावश्यक बिजली की खपत को रोकना न केवल बिजली बचाता है बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी कम करता है। यदि संभव हो तो सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं। वाहनों का सीमित उपयोग भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी दूरी के लिए पैदल चलना, साइकिल का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन को अपनाना वायु प्रदूषण और ईंधन की खपत दोनों को कम करता है। इससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। अगर आप अपनी कार लेकर कहीं जा रहे हैं तो उसे सिर्फ अकेले के लिए उपयोग न करें। संभव है तो अपने आसपास अपने इष्ट मित्र, अपने पड़ोसी परिवार के लोगों को भी यदि उसी दिशा में जाना है तो साथ ले जाएं। इससे आपसी सौहार्द तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ प्रकृति को भी हम थोड़ी सी अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएंगे उसके संरक्षण की दिशा में।

कागज की बचत पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है और आज के डिजिटल युग में तो कागज की बचत बेहद आसान सी बात हो गई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिजिटली डेटा अवेलेबल होने के बाद भी प्रिंट निकालते हैं। अनावश्यक प्रिंट निकालने से बचिए, डिजिटल दस्तावेजों का प्रयोग कीजिए, कागज के दोनों ओर प्रयोग कीजिए। ऐसा करके आप लाखों पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। बच्चों और युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना बेहद आवश्यक है।

गलियों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण विषयक प्रतियोगिताएं और प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियां विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करती हैं। आज का जागरूक विद्यार्थी ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा। भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी प्रकृति को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों को सम्मान देने की परंपरा शुरू से ही विकसित कर रखी है। माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। यह भावना हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाती है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लें तो पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन का सहज हिस्सा बन जाता है। पर्यावरण दिवस हमें यह संदेश देता है कि परिवर्तन किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। एक पौधा लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का त्याग करना, बिजली की बचत करना, स्वच्छता बनाए रखना और दूसरों को जागरूक करना, ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर पृथ्वी पर बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।

हमें सोचना ही नहीं बल्कि ये समझना भी है। प्रकृति हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है और विरासत का अर्थ ही होता है कि उसे आने वाली पीढ़ियों को उसके मूल रूप में हस्तांतरित कर देना है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, उसे मूल रूप में बना रहने दें। और हमारे छोटे से प्रयास से हम ऐसा कर सकते हैं, भविष्य को सुरक्षित, स्वच्छ और हरित दुनिया की नींव रख सकते हैं। तो आइए इस प्रकृति, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लें कि हम प्रकृति संरक्षण को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। यही प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकेंगे। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल कार्यक्रम रसधारा। यहीं तक रसधारा के अंतर्गत आज हमने बात की पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे उठाए जाने योग्य कदमों की। चलते चलते आप सभी के लिए आवाज किशोर कुमार की। सुनते रहें, साथ बने रहें। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम वन, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम के राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चेंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने

सच्चे दोस्तों दिल हार कर दिल जीतने वाले ही बाज़ीगर कहलाते हैं आप, और इसी के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचेता पर सरफराज के साथ। कहते हैं गमे इश्क रह गया है गमे जस्तजू में ढल कर, गमे इश्क रह गया है गमे जस्तजू में ढल कर, वो नज़र से छुप गए हैं मेरी ज़िंदगी बदल कर। मौज़ सामीन, खूबसूरत नगमों के बाद अब बारी है मंजरनामे का। दोस्तों चूँकि आज हेपेटाइटिस का आलमी दिन है, ऐसे में ज़रूरी है कि आज हम इस मोहलिक मर्ज से मुतालिक जानकारियाँ हिफ्ज़ान सेहत के तहत आपके नज़र करूँ। दोस्तों हेपेटाइटिस कोई बीमारी नहीं जो सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करती है जो ख़तरनाक रवैये में मलविस हैं। कोई भी फ़र्द ख़तरे में हो सकता है अगर वो मिसाल के तौर पर अस्पताल में काम करता है, सफ़र के दौरान नादानिश्ता तौर पर आलूदा खाना खाता है, या हेपेटाइटिस के ख़तरे को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बीमारी क्या है और कैसे फैलती है। लफ्ज़ हेपेटाइटिस इसका मतलब है जिगर की सोजिश, लेकिन इस सादा तारीफ के मुकाबले में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा संगीन हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या। अगर आपको मालूम हो जाए कि आप हेपेटाइटिस हो गया है आपको, तो आपको ये मालूम करना होगा कि आप किस किस्म में मुब्तला हैं। हेपेटाइटिस के 5 अकसाम हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई, जबकि हर किस्म के हेपेटाइटिस जिगर को मुतासिर करते हैं और जिगर की सोजिश का बाज बनते हैं। इनमें से हर एक के मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं। आपकी बीमारी की शिद्दत हेपेटाइटिस का सबब बनने वाले वायरस की कमी किस्म और इसकी मुद्दत से मालूम होती है। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर इसका शिकार होते हैं अगर आप कोई ऐसी चीज़ खाते हैं पीते हैं जिसमें वायरस था। हेपेटाइटिस ए सबसे कम ख़तरनाक किस्म है क्योंकि ये तकरीबन हमेशा खुद ही बेहतर हो जाते हैं। ये वायरस आमतौर पर आपके जिगर के तवील मुद्दती सोजिश का सबब नहीं बनते। इस वायरस से मुतासिर लोगों की एक छोटी सी फ़ीसद इतनी बीमार हो जाती है कि वो अस्पताल से तिब्बी इमदाद हासिल कर सकें। इसके अलावा एक वैक्सीन भी मौजूद है जिसे रोक सकती है। इस किस्म का वायरस हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इस किस्म के वायरस कई तरीकों से फैलता है। एक फ़र्द इससे मुतासिर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी किसी ऐसे शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात से जो पहले ही बीमार है या सड़क पर दवाएं इस्तेमाल करता है, तो इंजेक्शन की सुई बांटकर या हेपेटाइटिस बी पैदाइश के वक्त या इसके बाद फौरन बाद माँ से नौजादा बच्चे में भी मुंतकिल हो सकती है। इस वायरस से मुतासिर ज़्यादातर बालिग अफराद बेहतर हो जाते हैं, ताहम एक छोटा हिस्सा इस पर काबू नहीं पा सकता और वो कैरियर बन सकता है, जिसका मतलब ये है कि वो इसे दूसरों तक मुंतकिल कर सकते हैं, यहाँ तक इनकी अपनी इलामात गायब हो जाती है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। आप इस किस्म के वायरस से मुतासिर हो सकते

सकते हैं जब आप आलूदा खून या गैर कानूनी अवधियात के लिए इंजेक्शन लगाने वाली सुइयों से राबता करते हैं। बाज़ औक़ात आप कोई इलामात या इलामात नहीं दिखाते या सिर्फ हल्की इलामात नहीं दिखाते हैं। ताहम बाज़ सूरतों में हेपेटाइटिस सी सीरियोसिस का सबब बन सकते हैं और जिगर के इंतहाई ख़तरनाक दाग बनते हैं। हेपेटाइटिस डी, यह सिर्फ इस सूरत में होता है जब आप पहले ही हेपेटाइटिस बी से मुतासिर हों। ये इस बीमारी को मज़ीद संगीन बनाता है। ये वायरस जींस और माँ से बच्चे में फैलता है। अब बात हेपेटाइटिस ई की करें तो ये बुनियादी तौर पर मैक्सिको, अफ्रीका, एशिया और अपने हिंदुस्तान में पाया जाता है। ये आम तौर पर इन अफराद को मुतासिर करता है जो किसी ऐसे मुल्क से वापस आते हैं जहाँ इस बीमारी की वबा फैली हो। हेपेटाइटिस ए की तरह इस शख्स को आमतौर पर इस वायरस से आलूदा किसी चीज़ के इस्तेमाल यानी खाने पीने से होता है। हेपेटाइटिस की वजूहात क्या है, आइए जान लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस के ज़्यादातर केसेस का सबब बनते हैं। बाज़ औदियात या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल भी हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं। खुद से क़ुव्वत मुदाफ़त की हालत जहाँ जिस्म का कुदरती दफाई निज़ाम ज़्यादा फाल हो जाता है और जिगर पर हमला शुरू कर देता है, वो भी हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं। ख़तरा बर्ताव, बाज़ रवैया आपके हेपेटाइटिस के ख़तरे को बढ़ाते हैं। एचआईवी और हेपेटाइटिस के ख़तरात का अगर हम बात करें तो अगरचे एचआईवी हेपेटाइटिस का इलाज करना ज़्यादा मुश्किल बनाता है, एचआईवी को ख़तरे का अंसुर समझना गलत है। हेपेटाइटिस और एचआईवी दोनों वायरस हैं जो एक जैसे तरीक़ों से फैलते हैं, अगरचे इस तरह के नमूने हैं। एचआईवी हेपेटाइटिस का बास नहीं बनता। अगर किसी फ़र्द को गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात या सुइयां बांटने या गैर महफूज खून की फराहमी से खून के मुंतकली के ज़रिए एचआईवी का मर्ज़ लाहक होता है तो इसे भी हेपेटाइटिस का ख़तरा होता है। ताहम ये जिस्म की सयालों की नुमाइश है जो किसी शख्स को ख़तरे में डालती है, ना कि एचआईवी की हैसियत से। मकद से बराह रास्त राबता, जबकि ये हेपेटाइटिस ए बुनियादी तौर पर आलूदा पानी और खाने के ज़रिए फैलता है, जिनसी ज़ुबानी मकद से राबता भी हेपेटाइटिस वायरस को फैलाता है। औदियात और अल्कोहल का इस्तेमाल की बात करें तो काउंटर पर ना मिलने वाली कुछ दवाएं आपके जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दवाएं जो जिससे परेशानी लाहक होती है, इससे जिगर की चोट की सबसे बड़ी वजह बनती है। दिगर औदियात भी इसके लिए जो है वो मोहलिक साबित होते हैं। दायमी अल्कोहल पीने से अल्कोहल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, जो कि बहुत से मामलात में इसके आगाज़ के 6 माह के अंदर 40% मरीजों के मौत का जिम्मेदार भी बनते हैं। बच्चों के साथ काम करते हैं और बच्चों की देखभाल करने वाले कारकुनों को हेपेटाइटिस ए का ज़्यादा ख़तरा होता है। आमतौर पर डे केयर वर्कर डायपर तब्दील करने के बाद अपने हाथ धोना भूल जाते हैं, और अगर बच्चे अपने हाथ धोना भूल जाते हैं तो वो गैर इरादी तौर पर खिलौने, नमकीन और दीगर सतहों को आलूदा कर सकते हैं और टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। हेपेटाइटिस वाले शख्स के साथ रहता है और ज़ाती अशिया जैसे उस्तरा, दांतों का ब्रश या कील तराशे गए और थोड़ी मकदार में खून से आलूदा हो सकता है। सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद जो मरीजों से खून निकालते हैं उनमें सुई की लाठी का ख़तरा ज़्यादा होता है। वायरस इस तरह फैल सकता है अगर सुई पहले हेपेटाइटिस के मरीज पर इस्तेमाल की गई हो। खुराक और पानी के खतरात, हेपेटाइटिस ए बिलवास्ता मुंह से मिलते हैं। आमतौर पर पाखाने से आलूदा पानी या आलूदा पानी में रहने वाले या धोए जाने वाले खाने पीने से दिगर मशरूबात और खाने का ख्याल रखना है, जिनमें आलूदा पानी में धोए गए ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ और आइसक्रीम्स वगैरह।

सच्चे दोस्तों इश्क के करामात भी क्या क्या हैं, कभी बहार बन के कभी चार चांद बन के। कहते हैं कि महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। तो दोस्तों उजाला बरकरार रहने के लिए और रखने के लिए अब रुख करते हैं आकाशवाणी कोलकाता की खुसूसी पेशकश रोज़गार के मौके। आज की इस पेशकश में आप तर्जुमा निगारी को पेशा के तौर पर अपना कर कैसे रोज़गार कमा सकते हैं, इसकी मुकम्मल तफसील समाप्त फरमाएंगे। फिर ताखिर कैसी, चलिए चलते चलते हैं अब मौजू की तरफ। दोस्तों तर्जुमा निगारी वो दरीचा है जिससे दूसरी तहजीब और अकवाम का अहवाल हम पर खुलता है। जहाँ तक तर्जुमा निगारी का ताल्लुक है तो ये फ़न किसी भी दूसरे तख्लीक की काम से ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा है, क्योंकि एक ख्याल को तख्लीक का जामा पहनाने वाला शायद इतना ही सोचता है जितना कि किसी मुतरजिम की सोच है। तर्जुमा निगारी एक ज़बान की तहरीर को दूसरी ज़बान में बदलने का हुनर है, जिसमें असल इबारत का मफहूम, इसकी रूह और इसके बुनियादी पैगाम को हु बहू महफूज रखा जाता है। ये एक अहम पुल का काम करता है जो मुख्तलिफ ज़ुबानों कौमों के दरमियान ख्यालात का तबादला आसान बनाता है। जी हाँ दोस्तों, इल्म खाक कोई भी हो कि इसकी बुनियादी असूल से इनराफ नहीं किया जा सकता। पहली चीज़ है दुरुस्तगी, यानी असल मतन के मानी में कमी या ज़्यादती ना हो। दोयम है रवानी, तर्जुमा की गई ज़बान कुदरत

दोस्तों आप सुनते रहिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को, और इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सरफराज को, आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह खैर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, जिसे आप अपने मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। बच चुके हैं दिन के 12, मैं पूजा लेकर दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि। सुरभि का पहला पायदान चर्चा है के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक नहीं बल्कि दो विषयों की। तो आइए पहले बात करते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग की जयंती के उपलक्ष्य में, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इसके टीके के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना तथा इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के बारे में जानकारी देना है। यह एक ऐसी बीमारी है जो लीवर में सूजन लाती है। इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई हैं। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी सबसे अधिक गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने पर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। यह संक्रमक, दूषित भोजन और पानी, संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई तथा असुरक्षित यौन संबंधों के माध्यम से फैल सकता है। इस बीमारी से बचाव के लिए स्वच्छता का पालन करना, सुरक्षित और एक बार इस्तेमाल होने वाली सुई का प्रयोग करना, संक्रमित रक्त चढ़ाने से बचना तथा हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति में लंबे समय तक थकान, पीलिया, भूख न लगना या पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता ही बचाव है। समय पर जांच, टीकाकरण और सही उपचार अपनाकर हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आइए हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, ताकि स्वस्थ और हेपेटाइटिस मुक्त समाज का निर्माण हो सके। चर्चा है के अंतर्गत चर्चा करेंगे विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन लोगों को प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल, वायु, वन, मिट्टी और जैव विविधता है। यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो मानव जीवन भी संकट में पड़ जाता है। आज बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में प्रकृति का संरक्षण केवल सरकारों की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। हम छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रकृति की रक्षा में योगदान दे सकते हैं, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जल और बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, कचरे का उचित प्रबंधन करना तथा वन्य जीवों और जैव विविधता की रक्षा करना। यदि प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और हरित पृथ्वी का निर्माण संभव है। हम पर्यटन के लिए जाएं, लेकिन जहां भी जाएं उस स्थान को, नदियों को, पहाड़ों को, कंदराओं को, गुफाओं को दूषित ना करें। विश्व

प्राकृतिक संरक्षण दिवस हमें यह संदेश देता है कि प्रकृति की रक्षा ही मानवता की सुरक्षा है। तो आइए हम सभी मिलकर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लें और धरती को हरा भरा तथा जीवन के योग्य बनाने रखने में अपना सहयोग दें। चर्चा है कि अंतर्गत हमने बात की विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की और साथ ही साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस की। आइए सुन लेते हैं मन्ना डे की आवाज में इस गीत को, गीत के उस पार, कार्यक्रम सुरभि का अगला पायदान पहल।

12:09:48 दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि और सुरभि का अगला अंक पहल। पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे MSDP मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना। इसी वर्ष 2008-09 में सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। तो आइए जान लेते हैं सच्चर समिति क्या है। सच्चर समिति का गठन 9 मार्च 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में किया था। इस समिति का उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना था। समिति ने वर्ष 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए गए। इन्हीं प्रमुख सिफारिशों के आधार पर मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाएं शुरू की गईं, ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों का समग्र विकास करना था, जहां मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन जैसे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी अधिक थी, तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। योजना के प्रारंभिक चरण में देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में विद्यालयों का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सड़क, कौशल विकास केंद्र, छात्रावास तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना था। वर्ष 2013-14 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया। पहले योजना का आधार केवल जिले थे, लेकिन बाद में इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए ब्लॉक, नगर और गांवों के समूह को, क्लस्टर्स को योजना की इकाई बनाया गया। इसके बाद योजना का दायरा बढ़ाकर 710 ब्लॉक और 66 नगर तक विस्तारित किया गया, जिससे विकास कार्य और अधिक लक्षित और प्रभावी ढंग से किए जा सकें। MSDP के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कौशल विकास, पक्के मकान, सड़क, पेयजल, विद्युत, ITI, पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी केंद्र तथा डिजिटल साक्षरता जैसी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। कई क्षेत्रों में साइबर ग्राम जैसी पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का भी प्रयास किया गया। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की गई। हालांकि योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां भी सामने आईं। कुछ राज्यों में परियोजनाओं के प्रस्ताव समय पर न भेजे जाने से भूमि उपलब्ध होने, धनराशि जारी करने में देरी तथा निर्माण एजेंसियों के चयन में विलंब के कारण कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो सके। इसके बावजूद अनेक क्षेत्रों में विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें और पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे स्थानीय लोगों के बीच जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला। बात करें अगर हम वर्तमान स्थिति की, तो MSDP अब अपने मूल स्वरूप में संचालित नहीं हो रही। समय के साथ सरकार ने अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई और इस योजना को व्यापक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य योजनाओं के साथ समाहित कर दिया। आज भी इसका मूल उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की असमानताओं को कम करना और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विकास

योजना जिसने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। समावेशी विकास और सामाजिक समानता की दिशा में इसका योगदान भारतीय विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। पहल बस यहीं तक। दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि की कड़ी पहल के अंतर्गत आज हमने बात की मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम MSDP की। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। कार्यक्रम सुरभि अपने आखिरी मोड़ पर। आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को आज के इस कार्यक्रम से। चलते चलते छोड़े चलूंगी आपको अमिताभ भट्टाचार्य और स्वानंद किरकिरे की आवाजों के साथ। अगला कार्यक्रम इस गीत के उस पार। नमस्कार।

0: केंद्रीय दल की साप्ताहिक बैठक आज संसद भवन में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा में भाग लेंगे। भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। JAAC ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated

0: दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं। आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे

0: जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
2: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
3: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
4: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
5: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष

0: समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সরুদ পরিবেশন করবেন রাজীব চক্রবর্তী, রাগ বৃন্দাবনী সারঙ্গ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে মিডিয়াম ওয়েভ 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। খবর শুনবেন একটু পরেই।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: The Lok Sabha has taken up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, taking cognizance of the recent incidents of the paper leak, the Prime Minister himself decided that there is a need to further strengthen the legal framework to prevent malpractices.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav questioned the government's decision of recruiting official through outsourcing in the National Testing Agency, which conducts the NEET examination. The discussion is underway. The Rajya Sabha has been adjourned for the day following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. When the House met after the first adjournment at 2 p.m., Micro, Small and Medium Enterprises Minister Jitan Ram Majhi introduced the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. During the introduction of the bill, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students. As the uproar continued, Deputy Chairman Harivansh adjourned the House till tomorrow to meet again at 11 a.m. India has termed the so-called legislative assembly elections being conducted in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and hide its grave human rights violations in the region. Briefing media in New Delhi this afternoon.

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चला है 5:20:39। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी अपनी दोस्त प्रीति के साथ। उर्वशी कार्यक्रम में आज का सेगमेंट है एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से में हमने चुना है आज फिल्म मेरे महबूब को।

मेरी महबूब फिल्म जो कि 1963 में रिलीज हुई थी, हरनाम सिंह रवेल द्वारा निर्देशित है और इसमें अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अमिता ने अभिनय किया है। संगीत नौशाद साहब का है और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1963 में बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक स्थान पर रही और ये एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी जिसकी पृष्ठभूमि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ और पारंपरिक लखनऊ से ली गई थी। प्रसिद्ध गीत जो अभी आपने सुना, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम की शूटिंग विश्वविद्यालय हॉल में की गई थी और कुछ जगह पर विश्वविद्यालय की झलक भी देखने को मिलती है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में प्रसिद्ध आवासीय हॉल और उससे जुड़ा घंटाघर विक्टोरिया गेट भी दिखाया गया है। अक्सर प्रेम कहानियों में हम नायक की आंखों से प्रेम को देखते हैं, लेकिन आज जरा नजरिया बदलते हैं, है ना? सोचिए, अगर मेरी महबूब की नायिका अपनी कहानी खुद सुनाती तो उसके दिल में क्या चलता? वो पर्दे में है मगर बेबस नहीं, वो खामोश है मगर उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। उसकी मुस्कान में शर्म है, इंतजार है, विश्वास है और अपने प्रेम के लिए सम्मान भी। किसी लड़की के लिए प्रेम सिर्फ किसी का उसे देख लेना नहीं होता, उसके लिए प्रेम होता है पहचान लिया जाना, उसकी रूह को पढ़ लेना। वह चाहती है कि कोई उसके चेहरे से पहले उसके मन को देखे। नजरें झुकाना मेरी मजबूरी थी, कमजोरी नहीं। मैंने मोहब्बत

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल कार्यक्रम उर्वशी में आज आप सुन रहे हैं मेरे महबूब फिल्म से गीत। प्रेम में स्त्री सबसे पहले विश्वास करती है, वह रिश्ते को दिल से सींचती है, लेकिन उसके मन में एक डर भी रहता है, क्या यह रिश्ता समय की कसौटी पर खड़ा उतरेगा। मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं, किसी का भरोसा बन जाना भी इश्क है।

वक्त चला है 5:35 और 32 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। बात हो रही है फिल्म मेरे महबूब की। हर लड़की अपनी मन की बात तुरंत नहीं कह पाती। समाज की मर्यादाएं, परिवार की उम्मीदें और अपनी झिझक, इन सब के बीच उनका प्रेम अक्सर उनकी आंखों से बोलता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। बात हो रही है फिल्म मेरे महबूब की। इंतजार शायद प्रेम की सबसे कठिन परीक्षा जिसे हम प्यार कहते हैं, उसकी यादें रातों को लंबा बना देती हैं, लेकिन यही इंतजार रिश्ते को और भी गहरा कर देती है। जो हर रात याद बनकर आए, समझ लेना वही दिल में सबसे गहरा उतर गया है।

हर स्त्री चाहती है कि उसका साथी उसे सिर्फ सुंदर न कहे बल्कि उसे समझे, उसकी हंसी, उसकी खामोशी, उसके सपनों को भी पढ़े। तभी तो कहती है, मेरे महबूब में क्या नहीं।

अभी आप सुन रहे थे उर्वशी, इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से मैं हमने चुना था फिल्म मेरे महबूब से, तो इस फिल्म से आपने ढेर सारे गीत सुने। चलिए अब अगला कार्यक्रम सुनते हैं कुछ ही देर में।

0: You're tuned to the Sanchita channel of Akashvani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters, that is on 1008 kilohertz medium wave. Time coming up to 1800 hours. In a short while from now, we shall join our studios in Delhi for the news.
1: Namaskar. Akashvani Samachar ke saath, main Vishal Sharma. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की

खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयिता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं। मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त तो चले हैं 6:10:37। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी वार्ता अपनी दोस्त प्रीति के साथ। हिंदी वार्ता में आज का विषय है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, स्वस्थ लिवर स्वस्थ जीवन।

वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना, समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देता है। वर्ष 2026 की थीम है स्वस्थ लिवर स्वस्थ जीवन। हम अक्सर अपने हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क की चर्चा करते हैं, लेकिन शरीर का एक ऐसा अंग भी है जो बिना शोर किए दिन रात हमारी सेवा करता है। यह है यकृत अर्थात लीवर। जब तक यह स्वस्थ रहता है हमें इसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब इसमें कोई समस्या आती है तो पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है।

लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने, विषैले तत्वों को बाहर निकालने, पाचन में सहायता करने, विटामिन और खनिज को संग्रहित करने, रक्त को शुद्ध करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही कारण है स्वस्थ लीवर स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है।

प्रश्न उठता है कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस का अर्थ है लीवर में सूजन। यह सूजन वायरस, अत्यधिक शराब के सेवन, कुछ दवाओं, जहरीले रसायनों या अन्य कारणों से हो सकती है। वायरल हेपेटाइटिस सबसे अधिक चिंता का विषय है। इसके 5 प्रमुख प्रकार हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई प्राय दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी

संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध तथा संक्रमित माँ से शिशु तक पहुंच सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग हेपेटाइटिस बी और सी के साथ जीवन जी रहे हैं। इनमें से बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वे संक्रमित हैं। यही बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार वर्षों तक कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर लीवर को नुकसान पहुंचता रहता है। समय पर जांच न होने पर भी यह बीमारी सिरोसिस या लीवर कैंसर तक का कारण बन सकती है। हेपेटाइटिस होने के कुछ लक्षण हमें जो दिखाई देते हैं, वह लक्षण है लगातार थकान रहना, भूख कम लगना, मतली या उल्टी आना, बुखार, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाना यानी पीलिया होना, गहरे रंग का मूत्र तथा हल्के रंग का मल। यदि इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बने रहे तो चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह कि कई लोगों में शुरुआती अवस्था में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण का खतरा रहा हो तो जांच अवश्य करानी चाहिए।

अब सबसे मुख्य प्रश्न ये उठता है कि क्या हेपेटाइटिस से बचाव संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए प्रभावी टीके उपलब्ध हैं। नवजात शिशुओं को समय पर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही बच्चों और बड़ों को भी चिकित्सीय सलाह के अनुसार टीकाकरण कराया जा सकता है। साफ और उबला हुआ या सुरक्षित पानी पीना, स्वच्छ भोजन करना, भोजन से पहले और शौच के बाद हाथ धोना, खुले में बिखरने वाले दूषित खाद्य पदार्थों से बचना, केवल नई या पूरी तरह से स्टेरिलाइज सुई का उपयोग करना, रक्त चढ़ाने से पहले उनकी जांच सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार के टैटू या पियर केवल स्वच्छ और प्रमाणित केंद्र पर ही कराना, ये सभी सावधानियां संक्रमण के खतरे को काफी कम कर सकती है।

किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज आधुनिक चिकित्सा में प्रभावी उपचार उपलब्ध है। समय पर पहचान और सही इलाज से रोग को नियंत्रित किया जा सकता है तथा गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। बात करते हैं लीवर को स्वस्थ रखने वाली जीवन शैली की। सबसे पहले संतुलित भोजन अपनाइए। अपनी थाली में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। अत्यधिक तला भुना, बहुत अधिक मीठा और बहुत अधिक वसा वाला भोजन कम कर दें। वहीं पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आवश्यक है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। नियमित व्यायाम लीवर के लिए अत्यंत लाभकारी है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज चाल से चलना, योग प्राणायाम तथा हल्का व्यायाम शरीर के साथ साथ लीवर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। अनावश्यक दवाओं का सेवन कभी भी स्वयं से नहीं करना चाहिए। कई बार बिना चिकित्सीय सलाह के दर्द निवारक या अन्य दवाओं का अत्यधिक सेवन भी लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं धूम्रपान और शराब का सेवन लीवर के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। यदि किसी व्यक्ति को मधुमेह, मोटापा या उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उनका उचित नियंत्रण के

भी लीवर की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। आज के समय में फैटी लीवर भी तेजी से बढ़ रही समस्या है। यह केवल शराब पीने वालों में ही नहीं बल्कि गलत खान पान, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मधुमेह के कारण भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि प्रारंभिक अवस्था में जीवन शैली में सुधार करके फैटी लीवर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें यह सिखाता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसे सहानुभूति, सहयोग और सही जानकारी की आवश्यकता होती है। हेपेटाइटिस सामान्य सामाजिक संपर्क, साथ बैठने, हाथ मिलाने या साथ भोजन करने से नहीं फैलता, इसलिए अफवाहों पर नहीं वैज्ञानिक तथ्यों पर विश्वास करें। भारत सरकार और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाएं समय समय पर हेपेटाइटिस की रोकथाम, जांच और उपचार के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित करती हैं। इनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग समय पर जांच कराएं और आवश्यकता होने पर उचित उपचार प्राप्त करें। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर एक बार फिर से यही संदेश देना चाहूंगी, स्वस्थ लीवर स्वस्थ जीवन। अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता।

0: अपराधम् आलक्ष्य ईशून्य FIR पंजीकरणस्य नूतना काचित् व्यवस्था प्रवर्तिता। गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमारः सूचितवान् यत् अस्मिन् ईशून्य FIR तंत्रे 12,000+ प्रकरणानि एतावता पंजीकृतानि। मन्त्रिणा निवेदितं यत् अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं निश्चित वित्तीय हानेः परिदेवनानि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल उतवा 30,119,000 इति सहायता संख्यायां पंजीकर्तुं शक्यते। अद्य दक्षिण जापाने तावत् तीव्रतमं भूकंपः दुरापन्नः। जापानस्य ऋतुविभागानुसारं अद्य अपराह्ने कुमामोटो प्रान्ते 7.1 परिमितं तीव्र कंपनम् अनुभूतम् आगतम्। विभागेन एरिया के समुद्रस्य अथ च यासुशिरो समुद्रस्य तटवर्ती क्षेत्रेषु सुनामी संचेतना प्रसारिता। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टेः संभावना अवलोक्य रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। दिल्ली सहितेषु उत्तर भारतीय राज्येष्वपि अत्यधिक वृष्टि नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 6:23 और 16 सेकंड। आप सुन रहे कार्यक्रम गुल गुलशन अपनी दोस्त प्रीति के साथ। गुल गुलशन कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनूप चलोटा की आवाज में खूबसूरत सी गजल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल, कार्यक्रम है गुल गुलशन और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति। चलिए अब हम आपको आप सुनाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में एक बेहद ही खूबसूरत सी गजल, और इस गजल को सुनते सुनते प्रीति को दीजिए आज्ञा 7:30 पर कार्यक्रम दर्पण पर आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर। इसे आप डिजिटल मोड के साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। वक्त हो चला है 7:23:45। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दर्पण अपनी दोस्त प्रीति के साथ। दर्पण कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं एक नज़र

आज पूरे विश्व में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना तथा समय रहते जांच, उपचार और बचाव के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम है हेपेटाइटिस आइए इसे समाप्त करें, जो इस बात पर बल देती है कि सही जानकारी, समय पर जांच और उचित उपचार के माध्यम से इस रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे शरीर का यकृत अर्थात लीवर एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन को पचाने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, ऊर्जा का भंडारण करने और अनेक आवश्यक प्रोटीन बनाने का काम करता है। यदि लीवर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हेपेटाइटिस का अर्थ है यकृत में सूजन आ जाना और इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से कुछ दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि कुछ संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, असुरक्षित यौन संबंध या संक्रमित मां से शिशु में। दुर्भाग्य की बात यह है कि कई बार हेपेटाइटिस के प्रारंभिक चरण में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे थकान, भूख कम लगना, उल्टी, पेट में दर्द, आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, गहरे रंग का मूत्र जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। यदि समय पर उपचार न मिले तो ये बीमारी लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस से बचाव संभव है और इसके लिए कुछ सरल उपाय अपनाने चाहिए। स्वच्छ भोजन, शुद्ध पानी का सेवन, केवल नई और सुरक्षित सुई का उपयोग, रक्त संचार से पहले उसकी जांच सुनिश्चित करना, व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जैसे रेजर और टूथब्रश साझा न करना और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण अवश्य लगवाना। यह टीका सुरक्षित और प्रभावी है। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से थकान, पीलिया या लीवर से जुड़ी कोई समस्याएं महसूस हो रही हो तो बिना देर किए चिकित्सक से परामर्श ले और आवश्यक जांच कराए। आज चिकित्सा विज्ञान में हेपेटाइटिस के कई प्रकारों का प्रभावी उपचार उपलब्ध है। समय पर पहचान से रोग को गंभीर होने से रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के बड़े खतरे के रूप में समाप्त किया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भागीदारी अवश्य है। इस वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि अपने लिवर की सुरक्षा करेंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, समय पर टीकाकरण कराएंगे, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी इस बीमारी के प्रति

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिर छिड़ी बात। इसके अंतर्गत हम आपको सुनाते हैं एक से एक बेहतरीन नगमे। आइए सबसे पहले सुनाएं कल्याण जी आनंद जी के संगीत में आनंद।

अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने और गीत के बोल लिखे हैं हजरत जयपुरी ने।

आइए अब सुनते हैं राहुल देव वर्मन के संगीत में गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर से इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे आर डी बर्मन के संगीत में गुलशन बावरा का लिखा हुआ गीत, किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अगर तुम ना होते से इस गीत को। आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं, चित्रगुप्त के संगीत में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म काली टोपी लाल रुमाल से। तो इस गीत को सुनते सुनते प्रीति को दीजिए आज्ञा, फिर मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

0: এখন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান সমাচার সন্ধ্যা।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 144 16 पर कॉल करें।

0: कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
3: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
2: To ensure speedy justice.
1: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
4: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
5: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।

0: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
2: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
3: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9।

0: लक्ष्य की अगर बात करें तो 2036 तक भारत को दुनिया के अग्रणी खेल देशों में शामिल करने और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल करने का विजन हम लेकर के चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारी आज की नीतियां हैं और जिस तरह से हमारी जो तैयारियां चल रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं और अभी तक कहां तक हम पहुंच चुके हैं और आगे हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या अवसर आने वाले हैं?
1: जी, अगर हम नीतियों के बारे में बात करें तो पिछले साल में खेलो भारत नीति लागू हुआ है और इसका अगर हम इसमें क्या है अगर इसमें देखा जाए तो उसमें 5 स्तंभ की बात होती है। विश्व मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और खेल को जन आंदोलन रूप में कैसे बनाना है और शिक्षा के साथ खेल को कैसे हमको एकीकरण करना है, ये हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसी से बहुत स्पष्ट रूप में हमारे सामने रहती है। अगर अवसर की बात करें, हम ये सब तो हासिल करने की जरूरत है, इस सबको सशक्तिकरण करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमको इस दिशा में हम जब जाते हैं तो बच्चों को खेल से जुड़ने का प्रयास हम सबको करना है और ये सिर्फ खेल से नहीं और खेल और शिक्षा को एकीकरण से ही ये हो सकता है। उनको जब सुविधा सही टाइम पे देंगे, सही टैलेंट खोजना, हमको टैलेंट पूल को ज्यादा से ज्यादा बड़ा बनाना, यही हमारा सबसे ज्यादा अवसर है।
0: जी हिमा जी, खेलो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये जो गेम्स हैं, जो खेल खेले जाते हैं खेलो इंडिया के अंतर्गत, वो स्कूल, यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा, विंटर, बीच, वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल गेम्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो विस्तार दिया जा रहा है इन खेलों का, तो इससे आपको लगता है कि भारत की खेल संस्कृति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसका सकारात्मक असर लगातार हमारे जो युवा प्रतिभा है, खेल प्रतिभा, उस पर पड़ रहा है?
1: अगर हम खेलो इंडिया प्रतियोगिता की बात करें, ये सबसे सक्सेसफुल मैकेनिज्म रहा है स्पोर्ट्स के प्रति। इसमें बच्चों को एक तो खेल के ऊपर इंटरेस्ट जागरूक करने के लिए और खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए इसमें नेशनल लेवल का कंपटीशन किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे खेलो इंडिया प्रतियोगिता कहाँ कहाँ पे हुआ है देश में, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके बिहार, पूर्वोत्तर राज्य में हुआ है, दक्षिण भारत देश में हुआ है, पूरे देश में फैला हुआ है खेलो इंडिया प्रतियोगिता। इसमें बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है कि अंतर जातीय स्तर पे एक प्रतियोगिता कैसे किया जाता है। जब बच्चे उस कंपटीशन को देखेंगे उनको एक झिझक नहीं रहता है जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते हैं। ये खेलो इंडिया प्रतियोगिता का सबसे बड़ा योगदान है। इसके अलावा अगर हम पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में अगर खेलो इंडिया गेम्स का योगदान देखेंगे, ये स्पोर्ट्स इवेंट जब भी होता है कोई भी राज्य में, उस राज्य ये सोचता है कि हम इवेंट्स के बाद क्या करें, मतलब हम लेगेसी प्लानिंग कैसे करना चाहिए, तो उसमें शिक्षा स्पोर्ट्स एक्सलेंस की तरफ जाती है। सपोज इवेंट से हम शुरू करेंगे पर वो जाता है एक्सलेंस के ऊपर और मेडल्स की तरफ जाता है, तो इवेंट्स, स्पोर्ट्स इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एक्सलेंस, ये सब खेलो इंडिया प्रतियोगिता के द्वारा हासिल हुआ है।
0: हिमा जी, आप भारतीय खेलों की अगर हम बात करें और खेलो इंडिया की बात करें तो बहुत ही नजदीकी से आप इन्हें देखती हैं, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि ये जो योजना रही इसने वास्तव में ग्रामीण और जो छोटे कस्बों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर नई प्रतिभाओं को खोलने के अवसर हमें ज्यादा प्राप्त हुए, वहां से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके सामने आई हैं?
1: खेलो इंडिया का अगर आप उसका लक्ष्य देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, एक है मास स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिर स्पोर्ट्स एक्सलेंस है। तो इसके द्वारा खेलो इंडिया में अगर आप ग्रास रूट्स को लेकर बात करेंगे, हम पूरे देश में 1000 के ऊपर खेलो इंडिया सेंटर है और इसमें 28,000 से ज्यादा बच्चे इसमें प्रशिक्षण को प्राप्त हो रहा है उनको, और अस्मिता लीग्स में महिला खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। ये सिर्फ महानगरों में नहीं, छोटे शहर में भी होने लगा है। इसके अलावा जो खेलो इंडिया गेम्स का ब्रांड है वो गांव तक आजकल पहुंच गया है। तो खेलो इंडिया में सिर्फ महानगर के बच्चे नहीं है, इसमें गाँव वाले और छोटी शहर बच्चों को भी एक मौका मिल रहा है, एक पहचान मिल रहा है, एक दिशा भी मिल रहा है और सुविधा भी मिल रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखेंगे तो जिला स्तर पर भी बहुत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा गया है। सो खेलो इंडिया और को ग्रास रूट्स में स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमने जो सक्सेस देखा है खेलो इंडिया के द्वारा ग्रास रूट्स में, उससे ये अंडरस्टैंडिंग पे आ गए कि हमको इसको और मजबूत करने की वजह से और रिजल्ट हमको आ सकता है।
0: यदि मैं आपसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करूं, जिसे हम सभी टॉप्स के नाम से जानते हैं, तो ये खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो इस तरह की जो योजना है तो भारत के ओलंपिक और पैरालंपिक प्रदर्शन में काफी बदलाव

0: हमें देखने को मिला है बीते कुछ समय में, तो इस योजना की आज की स्थिति और इसके फ्यूचर के बारे में और लोगों को इससे कितना फायदा हो सकता है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: हम टारगेट ओलंपिक स्कीम जो होता है इसके द्वारा खिलाड़ियों को कस्टमाइज सपोर्ट दिया जाता है। इसमें हम एक्सपर्ट कोचेस, खेल उपकरण, खेल विज्ञान विशेषज्ञ, फॉरेन एक्सपोजर वगैरह दिया जाता है। और इस एथलीट को, जो चुने हुए एथलीट्स है, इनको बहुत क्लोज मॉनिटरिंग किया जाता है। आपने जैसे बताया कि इसका फल हम सबको पिछले 10 साल में ओलंपिक्स में, आशियाई खेल में, राष्ट्रमंडल खेल में देखने को मिला है। इसमें हमको आगे ओलंपिक एस्पिरेशंस के हिसाब से अगर सोचे,
0: जी
1: ओलंपिक आकांक्षा के हिसाब से हम अगर सोचे तो और सपोर्ट करने की जरूरत है, और उसी दिशा में बहुत पहल लिया जा रहा है। एंड डिलीवरी मैकेनिज्म्स जो है टॉप्स का, उसको मजबूत करने की प्रयास निरंतर जारी है।
0: और हिमा जी, आज के समय में भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, तो ये जो युवा शक्ति है, और वो ऐसा युवा जो स्कूल और कॉलेज से निकल रहा है, वहां से पास आउट हो रहा है, तो खेल की संस्कृति की ओर भी आकर्षित हो रहा है, इसमें और बेहतर बनाने के लिए ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही है युवा जो है वो खेल संस्कृति का लाभ उठाए, और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं खासतौर पे ओलंपिक हो, पैरालंपिक हो या फिर विश्व कप हो, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
1: हम अगर युवाओं के बारे में बात करें तो दो चीज हमेशा याद में आता है कि एक है डेमोग्राफिक डिविडेंड और दूसरा है उनका फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो जरूरी है, ये दोनों। और इसमें अगर खेल में हम बात करें, हमेशा पॉपुलेशन की बात होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से मेडल कितना आना चाहिए इसका बात होती है, पर हमको ये मिसिंग लिंक जो है कि इस पॉपुलेशन में कितने बच्चे खेल पा रहे हैं और वो युवा होने के बाद कितने साल खेल पा रहे हैं और खेल के ऊपर उनका समय कितना है, न्यूट्रिशन कैसा है। तो हम खेल को सिर्फ मेडल के रूप में नहीं, खेल को हम अगर जब सेफ सिक्योर लाइवलीहुड के रूप में, खेल को जब हम फिटनेस के रूप में, खेल जीवन के भाग के रूप में जब देखेंगे हम, तब ज्यादा से ज्यादा युवा और बच्चे हम खेल की तरफ आएंगे और तब हमको ऑटोमेटिकली मेडल ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। हमारा जो भी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा या टॉप्स के द्वारा, फिट इंडिया के द्वारा, स्कूल्स के साथ जुड़े रहने का जो प्रयास है, ये सब उसी के लिए है।
0: जी हेमा जी, इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं और 2026 का ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें 124 सदस्यीय भारतीय दल उतरा है। हमारी शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, स्वर्ण पदक के साथ में हमारी शुरुआत हुई है और मीराबाई चानू ने लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता, इतिहास रचा है। तो ये जो सफलता हमें मिल रही है, इस सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि अभी जो कुछ समय से हमारी योजनाएं खेल के लिए चल रही हैं और जो तैयारियां हमारी हैं उनका कितना योगदान है?
1: हमारा तैयारी ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये एक स्टेक होल्डर का रिजल्ट नहीं है, ये बहुत सारे स्टेक होल्डर जब कोलैबोरेशन में और कन्वर्जेंस में काम किया है उसी का नतीजा है ये आज हम देख रहे हैं। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे इंटरमीडिएट और ग्रास रूट लेवल पे खेलो इंडिया काम कर रही है, टॉप्स एलीट लेवल के लिए काम कर रही है, और अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स, एशिया गेम्स ये सब हम देखें तो एक माहौल बन चुका है देश में, और नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, हॉकी टीम, ये सब एक माहौल बन चुका है और सक्सेस इज कंटेजियस आज के दिन में स्पोर्ट्स में, और एक को देख के एक और बढ़कर एफर्ट लगा रहे हैं, ये सबको ओवरऑल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस, एक्सपर्ट कोचेस, ये सब मदद हो रहा है, और आगे हम ये उम्मीद है कि हम इससे और गुना मेडल देश के लिए आएगा, उसी के लिए प्रयास है।
0: हिरमा जी, एशियाई खेलों की अगर हम बात करें तो साल 2014 में भारत ने 57 पदक जीते थे और 2023 में रिकॉर्ड 107 पदक हासिल किए, लगभग दोगुने तक हम पहुंच चुके थे, तो क्या ये बेहतर खिलाड़ियों का परिणाम आप मानती हैं या जो हमारी देश की सशक्त हुई खेल नीति है उसका असर है?
1: दोनों को क्रेडिट देने की जरूरत है इसमें
0: जी,
1: क्योंकि जब आपको इसमें अगर एक ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट अगर देखा जाए तो जब नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो ओलंपिक्स में
0: जी,
1: तब उसके बाद एक उम्मीद आई है कि एथलीट्स में कि हम भी कर सकते हैं, और एक माहौल भी बन गया कि पूरे देश में कि अगर नीरज चोपड़ा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का स्ट्रेंथनिंग करना, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको मजबूत करना, खेल विज्ञान विशेषज्ञों को बहुत ताकत देना, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को ताकत देना, एथलीट का कस्टमाइज सपोर्ट देना टॉप्स के द्वारा हमारा सेंटर्स में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जुड़ के काम करना, तो ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेटिव एफर्ट

0: एफर्ट्स और जो हम मजबूत करने का जो भी एफर्ट्स है इसी का नतीजा है।
1: हिमा जी, अभी आपने ओलंपिक का जिक्र किया तो मेरे जहन में एक बात आती है कि अगर हम पैरालंपिक का यहाँ पर जिक्र करते हैं तो भारत ने 2016 में 4 पदक जीते थे पैरालंपिक में, वहीं 2024 में 29 पदक जीते। ये बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि रही है भारत के लिए। तो पैरा खिलाड़ियों का जो ये पहले की तुलना में बेहतर हम परिणाम देख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है उन अवसरों की ओर इशारा करता है जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आगे की अगर योजना की हम बात करें तो किस तरह के और बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं?
0: अगर हम पैरा खेल की बात करें, ये तो मानना पड़ेगा कि पैरा एथलीट्स जो है हमारा, ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है।
1: जी
0: हम अगर जब वो मेडल जीतते हैं, जो उनका चैलेंजेस पार करके जो मेडल जीतते हैं, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसको रिकॉग्नाइज करते हुए जो सपोर्ट उनको मिल रहा है हमको टॉप्स के द्वारा, टॉप्स आजकल पैरा एथलीट्स भी टॉप्स में है,
1: जी
0: और हमारा खेलो इंडिया एथलीट्स जो हमारा उत्कृष्ट एथलीट्स को हम जो सपोर्ट करते हैं उसमें भी पैरा शामिल है। इसके अलावा डेडिकेटेडली खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी हुआ है, उसमें से भी बच्चे निकल के आ रहे हैं। इनफैक्ट उस खेलो इंडिया एथलीट्स 6 एथलीट्स पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक गेम्स में।
1: जी
0: तो हमको ये आगे जाके पैरा खिलाड़ी जो भी है उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफायर्स को बनाने की जरूरत है, एक्सपर्ट कोचेस को इसमें बनाने की जरूरत है हमको, और बहुत सारे फैसिलिटीज। हम खेलो इंडिया में ये भी स्टेप लिया है कि अगर कोई प्राइवेट एकेडमी एक्सेसिबिलिटी के साथ है, वो पैरा फैसिलिटी के लिए अक्रेडिटेशन लेना चाहती है, वो भी सुविधा आज के लिए अवेलेबल है। तो हम पैरा अक्रेडिटेड एकेडमीज, जो पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन हो सकता है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है आज के दिन में। हम उनके लिए ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र अवेलेबल करने की जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा मेडल आने की चांसेस है।
1: जी हेमा जी, बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में पहुंच चुके हैं। देश में खेल संस्कृति विकसित करने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है और कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं जो बहुत ही छोटी जगहों से आए हैं हमारे सामने। तो इनकी सफलता और भारत की मौजूदा खेल नीति और भविष्य की बात करें तो इनके बारे में आपके विचार क्या होंगे?
0: जो बच्चे आते हैं खेल में, उनके लिए एक भूख होता है, एक लक्ष्य होता है, बहुत बच्चों के लिए एक अपवर्ड मोबिलिटी की मौका होती है स्पोर्ट्स। तो हमको इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की तरफ बहुत बच्चों को हमको नर्चर करने की जरूरत है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल में आना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एकीकरण हो जाता है।
1: जी
0: और हमको देश में बहुत सारे प्रशिक्षित कोचेस का जरूरत है।
1: जी
0: हमको पीईटीस है, पीईटीस को हम ग्रास रूट कोचेस को डेवलप करने की जरूरत है, वो हमारा दे आर आवर आईज ऑन द ग्राउंड। तो ये
1: जी
0: प्रशिक्षित कोचेस को बनाने का बहुत जरूरत है। और जैसे बताया था कि टैलेंट खोज और टैलेंट डेवलपमेंट सही टाइम पे करे, सही तरीके से करे, तब हमको ज्यादा से ज्यादा मेडल प्राप्त करने का अवकाश है।
1: जी
0: और हम सबको और ज्यादा कन्वर्जेंस करने की जरूरत है। इनके लिए जो भी सुविधा स्कीम कानून मजबूत करने की जरूरत है, वो सबकी दिशा में ही प्रयास और सोच दोनों जारी है।
1: हेमा बिंदु जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
2: अभी आप सुन रहे थे खेलो इंडिया से भारत में खेल परिदृश्य में आए बदलाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय खेल प्राधिकरण में उपनिदेशक एस हेमा बिंदु। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दशकों से भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। उन्होंने कहा कि भारत में जैन जी सहित सभी लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का अंत होना चाहिए। पाकिस्तान और सिंधु घाटी सभ्यता पर श्री जायसवाल ने कहा कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरवाद और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, वो किसी भी प्रकार की बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत का दावा नहीं कर सकता। चीन के साथ सीमा व्यापार पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देश पिछले वर्ष 3 निर्धारित व्यापारिक बिंदुओं लिपुलेख दर्रा, शिपकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए थे। श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN ड्रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: युगांडा में जून के मध्य में अंतिम ज्ञात रोगी के ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कोई नया मामला दर्ज न होने के कारण युगांडा को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित कर दिया गया है। इबोला वायरस के दुर्लभ बंडी बुग्यो स्ट्रेन के कारण फैले इस प्रकोप की पुष्टि युगांडा में सबसे पहले तब हुई जब पड़ोसी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DR Congo से संदिग्ध मामले सीमा पार करके आए।
2: युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार पहले मामले कांगो के नागरिकों के थे जो इबोला के इलाज के लिए युगांडा में आए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि युगांडा ने इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों की बारीकी से निगरानी करके इसके प्रसार को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया। इबोला रोगियों के संपर्क में आए सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा गया और उन्होंने आगे संक्रमण के किसी भी लक्षण के बिना आवश्यक 21 दिवसीय निगरानी अवधि पूरी की। इस प्रकोप के लिए जिम्मेदार बंडी बुग्यो स्ट्रेन अभी भी एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि वर्तमान में इसके लिए कोई स्वीकृत टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा सहयोग और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों पर चर्चा हुई। बातचीत से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और अमरीका के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करना है।
3: बैठक के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिकी कैपिटल का दौरा करेंगे जहां वे सीनेटरों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस पर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की उपग्रह तस्वीरें उपलब्ध कराकर मौजूदा जारी संघर्ष के दौरान ईरान का समर्थन करने का आरोप लगाया था। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पहले वॉशिंगटन पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के चुने जाने के बाद से दोनों नेताओं के बीच ये 8वीं मुलाकात होगी। रवाना होने से पहले श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोनों नेता कार्यसूची में शामिल सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिनमें सबसे पहले ईरान का मुद्दा होगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत की पहली सी

0: ही वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय ने बताया कि कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। इस सफल संचालन से कोलकाता बंदरगाह से विराट नगर तक कंटेनरीकृत माल की सीधी रेल ढुलाई संभव हो गई है, जिसमें सीमा पर माल का स्थानांतरण नहीं होगा।
1: इस नई व्यवस्था से पारगमन समय, लॉजिस्टिक्स लागत और माल प्रबंधन में कमी आने की उम्मीद है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार व्यापार की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि सीधी माल ढुलाई सेवा से आयात और निर्यात माल की आवाजाही को भी काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये सेवा परिवहन का एक तेज, अधिक सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल तरीका प्रदान करती है। मंत्रालय ने कहा कि कई अलग अलग स्थानों पर माल के हस्तांतरण की समस्या को कम करके और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार करके ये पहल निर्यातकों, आयातकों, लॉजिस्टिक संचालकों और सीमा पार व्यापार में लगे उद्योगों को लाभ पहुंचाएगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 जून के बीच सीमा पार हिंसा में 57 लोग मारे गए और 342 लोग घायल हुए हैं। इन सभी के लिए पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। लीबिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच प्रदर्शनकारियों ने त्रिपोली के पास एक महत्वपूर्ण ऊर्जा परिसर में धावा बोल दिया। ये प्रदर्शनकारी लंबे समय से जारी बिजली कटौती को लेकर विरोध कर रहे थे। इससे देशव्यापी ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी बेहतर बिजली सेवाओं और प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा की राष्ट्रीय एकता सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जापान के दक्षिणी कुमामोतो प्रांत में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे क्षेत्र में 50 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और सड़क संपर्क भी अवरुद्ध हुआ। भूकंप के कारण रेल और परिवहन सेवाओं पर भी व्यापक असर पड़ा है। स्थानीय आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि लगभग 3 लाख निवासियों को निर्धारित आश्रय स्थलों पर जाने की सलाह दी गई है। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है, जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। चीन के हांगजो में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोलीबारी में 20 प्रदर्शनकारी मारे गए। भारत ने POJK में तथा कथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने का एक छलावा बताया। युगांडा में अंतिम मरीज के ठीक होने के बाद देश को इबोला मुक्त घोषित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आज राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: You had been listening to Miles Davis and Someday My Prince Will Come. And with that, we wind up this edition of Jazz Time. Thank you for joining us. Good night. You are tuned to the Sancheta channel of Akashvani Kolkata. Time coming up to 2300 hours. In a short while from now, she'll join our studios in Delhi for the news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि

मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
1: फिर कहो।
0: दीवाना।
2: शैलेंद्रर कथाय सलिल चौधुरीर सुरे एबारेर गान परख ছবি থেকে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে।